0: lua lo lung di ti lak ngai thak tak kha hcl sang ru lura sak ani ole tu tu jong chu tun chung kalung dum huna zai moi tak tak ngai thak ho thai le chu ani a facebook lama live am lo thir tu te le akashwani aizol all india radio a milong tha tu te in zawa in lom thu kan soi ni
1: tidam thelo shikpai turin hanlalsu wandoi wang a in du khanswal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front so mitse ni en
2: मार्केट के बारे में क्या
3: परफॉर्मेंस का बोलो
4: मार्केट ट्रेंड देख
2: सुनने में आएगी
5: आज की खबर में पहले ही बोला ब्रो
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
4: मेरे दोस्त ने बोला
7: देवी जी की सुनो
8: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
10: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
9: हा?
10: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
9: सॉरी
10: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
9: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
10: मतलब
9: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
0: hei akashwani aizol in donan chuan kan program don lok tlang pui lo ngai thlang u dar sari le chan ve aron rik hian chan chin tharmi chotong che kan ngai thlang a dar sari le mrit somli panga a thlir vel na hun kan mang ho don ani ti chuan dariat atanga dariat le mrit somli thleng hian chan chin thar delhi mi lak chhon kan ngai thlang a dare le mrit somli a chuan ram ngai thla kan ngai thla ve thunga he huna hian si vanal du saki omega fanai le kel rong boli te hnen tangin rongai thla an sak ngai thla ho don ani dar khu a chon sap la kan ngai thla anga he huna hian aba meyut le carpenters te hnen tangin zai kan ngai thla ho don an din dar khu la cham ve tang dar som thleng hian csu sponsor program ncrt hun kan mang anga dar som tang dar som le mit som panga zai re moi hun mangin dar som panga tang dar som le cham ve hian ram fate zai in hun kan mang ho don ani dar som le cham ve chuan sapla ka ngai thla ve thung anga ar kelly alesha dixon le the dream tan hen tangin dar som pakhat thleng an ni hian hun an ron mang don ani tin dar som pakhat atanga dar som phale mi som ni panga a chuan zai pol harem hun kan mang anga dar som pakhal le achan ve a dan le sai hun kan mangang dar som pani a chuan sapla kan ngai thla ve thung anga dar som pani la chan ve leng jem la kan ngai thla ho don ani dar khale mini nga da khale mini so ma hian chin chin thar sap tonga chedeli mi lak chon kan ngai thla anga dar khale mini so ma tanga da khale mini som li thleng hian pi puzai kan ngai thla anga tin dar khale mini som li a chon thadun hun kan manga lungrun ti la hrm siam le aral mai zuli sakte ma phasi cfl ming thanga le lut thu tha sakte ngi lo na par si zo sang zol le lang nyam zo sakte kan ngai thla ho don ani tu ti zong zo kan program don lo kan ngai thla thak ta chu ani akash wani aizol tanga pon chu ani a program te tul big thila chuan ti dangam thei ani ang hei akash wani aizol ani tuna chon chin thar mi zo tong chhiari lo ngai thlang u

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को. और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ZOY 100.7. और आपके साथ फिर एक बार हिंदी के खंड पे जुड़ी है आप सभी के लिए आप सभी की दोस्त आरजे वियली. और मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे. यस, और आज की सुबह भी आप सभी ने अच्छे से पाया होगा, देखा होगा, और अपने इस आज के दिन की शुरुआत भी बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरुआत की होगी. यस, और हम चाहते हैं कि आज का ये जो दिन आप सभी के लिए अच्छे से बीते, खुशियाँ और आनंद से दोस्तों, और प्यार भरे बातें करने के लिए आपको हमारे साथ FM ZOY 100.7 के साथ जुड़ना है दोस्तों. यस, तो चलिए मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूँगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस खंड में, हिंदी के खंड पे. और दोस्तों आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा और हम आज प्यार भरे बातें ही करेंगे, ठीक है. यस, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसलिए जितना समय हमें मिलता है, जितना हमें पल मिलता है, उस पल को, उस समय को, उस दिन को हमें हमेशा भरपूर खुशी के साथ बिताना चाहिए, ठीक है. यस, होनी कन नहीं ते मनी तरऊ गंदम छोंग रे लौते आह्यान निमले नुआम तका ओम आ हुन मन ते ही कंती तुरनी सिया तरऊ. तो हमारे साथ बाहर की दुनिया को छोड़ के FM ZOY पर प्यार भरे गीतों को सुनने के लिए और प्यार भरे बातें करने के लिए हमारे साथ आरजे वियली के साथ जुड़ जाइए दोस्तों. यस, आप सभी का इंतजार रहेगा. तो फिलहाल सबसे पहला इस खंड का गीत सुनते हैं, कुछ कुछ होता है मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

दोस्त, उम्मीद है आप सभी को कुछ कुछ होता है। उदित नारायण और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। कुछ कुछ होता है दोस्तों, यस, कभी कभी हमें कुछ कुछ होता है, किसी से मिलके, किसी से बात करते हुए मतलब आप सभी बातें करते हुए हमें कभी कभी कुछ कुछ होता है दोस्तों, यस ये समझदार वालों के लिए समझने की बात है समझदार जो समझदार नहीं है वो तो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि हमें कुछ कुछ होता है दोस्तों, यस और किसी ने कहा है कि समझदार के लिए बस एक इशारा ही काफी है

चलिए हम इस तरह ढेर सारी बातें करेंगे, हम हंसेंगे, हम मुस्कुराएंगे और आपको अच्छे अच्छे गीत भी सुनाएंगे। तो अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी दोस्तों इस खंड के लिए, घर कब आओगे। जब हम किसी से दूर जाते हैं, काम के लिए हो या किसी सफर के लिए हो दोस्तों, हम मतलब याद करते हैं अपने उन दोस्तों को, है ना दोस्तों। यस, कभी मतलब कब कहाँ किस वक्त फिर मुलाकात हो, है ना दोस्तों। यस, मैं चाहती हूँ कि आप जल्द ही अगर आप किसी से दूर हैं तो जल्दी मुलाकात कीजिए, मिलिए, ठीक है, बातें करिए। तो यहाँ पर मैं संदेश की तरफ चलना चाहूंगी और यहाँ पर फिटनेस बॉय यान, हाय हाय बॉस, इस यीशु मसीह के नाम आप सभी को जय मसीह। आज का दिन तुम खुशी से बिता सको, इसलिए मेरी ओर से तुम्हें सबसे ऊंची शुभकामनाएं। सच्ची पारितान, बहुत बहुत शुक्रिया फिटनेस बॉय, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। और मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में आप उदास हो। यस, आप कभी भी अपनी उम्मीदें मत छोड़ना, और कभी भी मतलब कभी कभी जब आपको समय मिलेगा हमसे बातें करिएगा, आपका इंतजार रहता है FM 100.7 पर, ठीक है। तो चलिए फिलहाल मैं सुनाना चाहूंगी फिटनेस बॉय के लिए उनका मन पसंदी घर कब आओगे संदेश से आते हैं, ये बॉर्डर टू से है दोस्तों। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं इस खंड का दूसरा गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों उम्मीद है आप सभी को घर कब आओगे यस गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, लेकिन अगले गीत की तरफ चलने से पहले मैं आपके प्यार भरे संदेश को पढ़ना चाहूँगी। यस और फिटनेस बॉय लिखते हैं, बॉस बहुत धन्यवाद, ये वाकई शानदार है। तुम हमेशा स्वस्थ रहो। यस ऑफ कोर्स हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहना हमेशा, ठीक है। यस और जामयान अजय बियल नमस्ते सुप्रभात। यस आपको भी नमस्ते जामो। और बाजार का ओमे का कंदोर आ का थेन हुन होना कलो राक्तियाम चियामांग अबाक छु छुम अबाक छु छुन जम ले जे तोर रंती ने ओले चान कुंग दे यानर जे मोवी वो इंजेल जाम बर्थडे पुआल नि लविन माफा बर्थडे पुआल इन इपे ली जोंग जोंग करन थांगे अरन दे बक अनी यस वन लोम ओम kan play ze lang o oh, RJ mafa RJ o mafa tan o kang ti pa yan RJ VL namaste ole nang pole o oh, isa play le tour ka ming moy te ang good boy ke ngai te ang call shing vi kung te ang ori sai lo ra material itan kala ne aron ti ani ngang ti pa yan lo mom chin le mai chuan al zet sai lo yan good morning ba lalvan tinge nimin i om lo nya ni min lam pang kha kam han cha lawa nga fel min law ngai mi eng ngai tu te nei be la za ma han min ngai boxi lawa good boy han arje manal ka law om sa o hanui pots la du vek anime enge fu vek anime tina nya nga ole chaming moi te hian wanla namaste ni len no amaron de bokani ole no am don inom hi chan ano am don ani mo fm sa oi hi chu ano amani good morning rj g yes hiten the das ji ki taraf se bhi hame good morning wish mila hai bahut bahut shukriya hiten the das ji aapko hame wish karne ke liye yes aur main bhi aap sabhi ko dher sari shubhkamnaen deti hu aaj nahi matlab aaj ke liye hi nahi pure मतलब जिंदगी भर हमेशा ठीक है यस तो चलिए अगले गीत

यस तो आप सभी अपने गमों को भूल जाइए और मेरे साथ अजय वीले के साथ प्यार भरे गीतों के साथ प्यार भरे बातों के साथ आप जुड़ जाइए, आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। यस दिल तो कभी कभी दुखता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दुखी रहे, है ना दोस्तों। यस और ईश्वर भगवान हमेरा मतलब हमारा साथ हमेशा देते रहेंगे और देते भी हैं दोस्तों, ठीक है, ये एक बात कभी मत बोलना। तो चलिए कहो ना प्यार है, सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

यस, कहो ना प्यार है दोस्तों, इस तरह हमारा और आपका जो मतलब हमारे बीच जो संबंध है ना दोस्तों, वो हमेशा प्यार भरा ही होता रहे. यस, मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई मतलब किसी से नाराज ना हो, है ना दोस्तों. यस, मैं तो आपसे नाराज नहीं होंगी और आप भी मुझसे नाराज मत होना, ठीक है. यस, ये नाराजगी ना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है. यस, ये शिंदू ना यान है कन रिलेशनशिप आ यान इन ती तौ ते इन थिन रिम ती ते इन ब्याग दू लो अंग ची ते खमो अमोई लो अ हौ ग ती मो अ पुई तिंग खाक लो ग ती यानी चुमो लाइक ये अगर हम किसी को चाहते हैं ना दोस्तों, उनसे प्यार का इजहार करते हैं, तो हमें पूरी ज़िंदगी भर ना अपने प्यार को निभाना चाहिए. और बीच में अगर कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसा

हो तो भी दोस्त, तो उसे सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास बहुत ज्यादा मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना दोस्तों. इसलिए दोस्तों मैं नहीं चाहती कि आपके जिंदगी में भी ऐसा ट्विस्ट आए, आपका मतलब आपकी प्यार भरी जिंदगी एक अधूरी जिंदगी बन जाए. यस, इसलिए दोस्तों रिल रुजाओ दे लो पुजेल छिन उला तरो. एम आई राइट कुंगते? और यहाँ पर फिटनेस बोहियान आज तो अपना अपना अलग अलग काम में लगे रहेंगे, ठीक है. लिम तकिन और रंतीनी फिटनेस बोहियान ओले जैसा आप कहे, लेकिन आपको समय मिलेगा तो हमसे कभी कभी बातें करना है, ठीक है. यस, हम आपका इंतजार करेंगे फिटनेस बॉय आपके संदेश का. और मातलॉन्ग अहियान आर जे व्यूली लव ड्यूटी हियान मैसेज इन थोन न सत थे बीक कई चू कथोन दोन तो लव नुंग नुंगी कथोन तो जोग दोन एंग सुतियामी मैसेज मेरा अंतन तम एम एम पो कैसे चुआंग लाओ ओ मातलुआंग के गए थे हियन गुड मॉर्निंग रंतिया. यस, आपको भी गुड मॉर्निंग के गए थे थो नुआ मो तक तक खा लो प्ले से रो ओ कलो गाई थर रेंग चेनिया रंति बोकने ओले कमन लो मिलो गाई थर लो मा ओमेगा सांग ते हियन एफएम जो ओ आर जे आ हियन तियांग अंगा ओई ओई ओई lim taka oh mang turin du sak na ka la na che oh bo interested na chan ni a lim taka mang turin du sak na ka la na che aba ka chung lam pangi zo ka chiar to lo me yang anu am eh me za tak fitness boy ha yang tingi a toble thu che la o ron tia aba mak pe a ng tingi a Ole tsuan, kung te message ron kling le, ah, kung te yan, RGMO VL, you are right, eh. ipang chang o hi ang ay nom chin, eh. ole, ole, tutsu titsu, ham chalte hem, bahut hi, master bhari, matlab, oh, disco lang pangka. ngay thang o sunte hain dil di nazar meri taraf se aap sabhi pyare doston ke liye.

Yes, you are the one for me. Yes, आप सभी मेरे लिए हो, ठीक है? Yes, और कोई हमसे बातें ना करे, कोई बात नहीं. कोई हमें ना चाहे, कोई बात नहीं. कोई हमें रिजेक्ट कर दे, कोई बात नहीं. लेकिन आप मेरे दोस्त, FM ZOY 100.7 के सभी दोस्त, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं करेगा और मुझसे हमेशा हमेशा बातें करेंगे, है ना? राइट? यस. और हमारे दोस्त विपिन की तरफ से संदेश आना है और उन्होंने बहुत ही प्यार भरा, जो हमें जरूर हंसा देती है, वो वैसा वाला संदेश मुझे भेजा है. और और उन्होंने लिखा है कि आज भी अच्छा है, खूबसूरत बोली का बिल नहीं आता. वरना आप तो कर्ज में डूब जाते. देखा ना, अगर जब विपिन का संदेश आता है ना, तो हमें इतना, मतलब इतना हंसी आता है ना, क्या बताए. और दूसरा संदेश आया है, ये नंबर हमने सेव नहीं किया है. और हाय, गुड मॉर्निंग, माय फेवरेट आरजे रेगुलर लिसनर फ्रॉम नागालैंड. प्लीज प्ले अ ट्रैक फॉर माय माय फ्रॉम द मूवी खुद खुद गर्ल्स. आपके आ जाने से. ओ एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग अस. एंड आई विल प्ले योर रिक्वेस्ट सॉन्ग. एंड कीप ट्यूनिंग अस. ऑलराइट. और यहाँ पर जलसा माहियान आर जे बी एल इमो निमिन खा मिजो सेगमेंट आर जे लोमी सेगमेंट कॉन्फी तकिन इड्यूटी पुई टूर हिंदी आर जे वी एल वेलितान ती इन कन ती थावे रिंगो ता आर जे लोमी निमिन हाउ फा शेप सिन आर जे लोमी चुआन हे ती हियान मिन ती आ जाम जामा जामा जकते हिंदी आर जे आ आर जे वेली चौ हि ओम लो ओ तुन चुम चु रोन रि स्वाल चियांग ती इन निमिन आ इरोन ड्यूटी थे ता लो चु अपोई वोंग वोंग किल किल तिन किल तंग अचंग इन मिन से चियाम चियाम सिन ओ कंगाई वोंग वोंग चे रोन त्यानी अनि तक्चु.

वेल दोस्तों, आपसे बातें करते करते आपको गीत सुनाते सुनाते हमने टाइम ही नहीं देखा दोस्तों, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। ये खंड इस खंड के लिए, यस, ये वाला जो गीत मैं आपको सुना रही हूँ, जो नागालैंड से हमारे एक प्यारे लिसनर्स ने फरमाइश की है, उस गीत को मैं ये आखिरी गीत बनाना चाहूंगी। तो मिलते हैं 10:40 पर दोस्तों। तो ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम दोबारा स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी सुन रहे हैं हमारे साथ आकाशवाणी आइजोल एफएम जॉय 100.7। दोस्तों, और आप सभी का समय कैसे बीत रहा है दोस्तों, हमें जानना है। हमें मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का समय दिन अच्छे से बीत रहा होगा, और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, है ना। आपकी तबीयत ठीक होगी और आप पहुँच भी चुके होंगे, और आप सभी ने अपने अपने काम शुरू भी कर लिए होंगे दोस्तों, क्योंकि सुबह के 10:30 बज चुके हैं दोस्तों। और 11 भी बजने वाले हैं। तो इस तरह हम भी अपने इस आज के हिंदी के दूसरे खंड की शुरुआत करना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ दोस्तों, और आप सभी के प्यार भरे संदेशों का भी इंतजार रहेगा दोस्तों। तो आइए सबसे पहला इस खंड का गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, इश्क हुआ कैसे हुआ। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और आपको भी सुनने में बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब लगेगा। आप सुनिए इस गीत को। और इस गीत को गाया है उदित नारायण और शुभा शर्मा ने दोस्तों। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं, प्यार भरा गीत। और मेरे साथ आरजेवी एली के साथ प्यार की दुनिया में हिंदी के संगीत की दुनिया में दोस्तों, बाहर की दुनिया को छोड़िए, मतलब बाहर जाने दीजिए जो आपसे बातें नहीं करना चाहते हैं, जो आपको पसंद नहीं करना चाहते, उनको छोड़ दीजिए दोस्तों, उनको याद भी मत कीजिए, ठीक है। और चलिए हम सुनेंगे प्यार भरा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, इश्क हुआ कैसे हुआ। अगर एक इंसान आपको छोड़ के चले जाता है ना, तो जाने दीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में ना दोस्तों और भी ऐसे इंसान आएंगे जो आपको बेहद प्यार करते हों, ठीक है। तो दोस्तों सुनते हैं ये इस खंड का सबसे पहला गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्त, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत यस इश्क हुआ कैसे हुआ आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ और यहाँ पर संदेश आया है मादेगा जहाओ एस लुंगफेर की तरफ से संदेश आया है और फिटनेस बॉय मैसेज भी पहुंचा है। लेकिन दोस्तों मैं इंतज़ार करूंगी थोड़ा सा, ठीक है? फिर एक गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद मैं आऊंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ, ठीक है? तो सुनते रहिएगा मेरे साथ आरजे वीले के साथ हिंदी के खंड में बहुत प्यार भरे, बहुत ही प्यार भरे गीत। चलिए सुनते हैं पंछी बोले मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

0: जल रही है चिता सांसों में।
1: वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को पंछी बोले बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ। लेकिन लेकिन दोस्तों, अगला गीत सुनाने से पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे के संदेश की तरफ, क्योंकि आप आप मुझे बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं आपके संदेशों को पढ़ने के लिए। आपके मतलब इंतजार को हम यूं ही अधूरा नहीं छोड़ने देंगे।

चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी तुझ में रब दिखता है। और इस गीत के सुनाने से पहले चलिए संदेश है माँ देगा की तरफ से, उन्होंने लिखा है मिसार जे वन लुंग लेन थाक वे आ खुलुम पो अदाई सोंग सोंग लोम इप्ले ले तुर खा इतान वेक ओ छ देव देव खा लौति छवाक जे रो ओ गलोंगाई थारेंग जेनिया जे टॉप ओ आर जे से सांग ते चु कन खुम थे चान लवांग दरो अनि ही आर जे जे आ जे जोंग जोंग आइ जेंग जे कति बेर मे नि मो सांग से सांग ते ही चान फिटनेस बॉय हियान, यस आज पता नहीं फिटनेस बॉय को क्या हो गया है कि उनका संदेश बार बार हिंदी से भेज रहे हैं और उन्हें तो मतलब वाकई में हिंदी बहुत आती है। यस और लिखते हैं कि जिसने ये कहा वो भले ही बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हो और हम उसके प्यार के काबिल नहीं ना भी हो, फिर भी उसके लिए दिल से सब कुछ न्योछवार कर देंगे। वाओ किसके लिए फिटनेस बॉय किसके लिए न्योछवार करना चाहेंगे आप, मेरे लिए या किसी और के लिए? और यस अजाम यान कदू नु आर जे बी एल सेगमेंट बोल चन्ना ला जेट सो मिनवन छोंग छबे मिनवन मोरो मिनवन छप छवे मो मिनवन छाप छवे ओ इप्ले ले तुर जोंग जोंग खा कंट्रोल रूम ड्यूटी जोंग जोंग ते ले ड्यूटी ऑफिसर तान ले उची पियांग उर द्वा तपा तान ले उमा लोंग मिशन वेंग ले आर जे नुंग नुंग ते नुंग नुंग छटका अन दी ए अन दी चौजे तैनात ले पुसामा वते नु परमिशन बैंक संगा मी तान पो ओ तिन पोंग तु अन का मोने तिन रेंग ने तु वीएल वीएली तान पो स्याबुम थुरिन ओ जाम आजे दुंग दुंग इ चंग चांग हे लो श्या मो एंटिंग एशिया ता अले तो चलिए फिलहाल इसी तरह हम मजे से अपने इस दिन को बिताएंगे दोस्तों। तो चलिए गीत थोड़ा सा कूल है लेकिन फिर भी ये गीत मुझे बहुत पसंद है, तुझमें रब दिखता है, बहुत ही खूबसूरत गीत रूप कुमार राठौर की आवाज में गाया गीत सुनते हैं। चलिए ये गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से।

तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को तुझ में रब दिखता है आप सभी को पसंद आया होगा रूप कुमार राठौर जी की आवाज में गाया गीत। यस, बहुत ही प्यार भरा गीत, तुझ में रब दिखता है। दोस्तों, इसी तरह दोस्तों आप भी अपने किसी दोस्त दोस्त हम सफर यस उनके मतलब उनमें एक ऐसा रब दिखे जो आपको बेहद पसंद आता हो, ठीक है। यस, और आप उन्हें दिखाने के लिए भी कोशिश कीजिए, है ना। यस, और हम चाहते हैं कि यूं ही इस तरह हमेशा आपके रिश्ते में कोई ऐसा ऐसी दरार ना आए जो आपके रिश्ते को मतलब कुछ ऐसा एंडिंग की तरफ ले जाए, ऐसा हम नहीं चाहते और हम उम्मीद भी नहीं करते दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम मस्ती वाला गीत सुनते हैं, ठीक है। हाय रे हाय रे ये गीत मुझे बहुत पसंद होता है सुनने में, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा, मतलब लगेगा। यस यस, मेरे साथ ही निके गीतों को सुनकर आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और अच्छा भी लगेगा दोस्तों। और हमारा समय है 11:20 तक दोस्तों, ठीक है। यस, और एलबी रेंथले की तरफ से संदेश आया है। एलबी रेंथले ह्यान RJVL ibul chanatsu avanal in avachave masei ole inuiri hi anal zog i play le tur kha itan liao liao oran tini albiren thle hi chu ha thak chi ne tinge mase ani le kanuiri kha amoi ti chuan enge nui na tur lam pang chi te kha mo hey in mase thum tok tok mai han chara han lei vel khal mo nui hi azale zwal chi ne ni chu ก็จะน้องบังติค่ะเราทนเวลา or จำมาเหียน RJC สังติ I ชวนยิ่งใจเฟ้ซอกโอรันเดียนี่เฮ้ยสังติอมเร่งเนี่ยโอ้จำมาสักเช้าโดนทั่วทั่วเราเชื่อเริงรู้จู่จู่เกี่ยวจู่เสียสังติเหียนอเลียจ่าอินทุกเราเจออินก็เชียRJ ซงซงอ่ะอิสยาเบอร์ฟูอ่ะอิสยาเบอร์哦，嗯，一下别发慌哦。我妈装个粗耳机，弄弄一点，segment 啊，加 message 通 regu 贝啊。哦，上帝不黑，阿拉 omring 啊，咱们就长多老年阿弟姐呀哦 ，segment 通呐 ，message 通通通呐，就阿切萨杜老麦提姐你哦，咱。or 都以后 producer 三弟啥呀嘿，fitness boy。ये तरफ से चान कुंगते परन लंगले आ कुंगते हिनार जो मोबाइल हिंदी ही वहां थियाम तक एम रन दिवेल नी ओवर सो ओ कुंगते वहीं तो कन मूड चले दोन नी टॉप मायना ओ मूड फुल लाउटे मूड चल लाउटे कन पल दोन लाउ नी मो तो चलिए सुनते हैं दो अजनबी चलिए जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत चलिए मस्ती वाला गीत तो चलिए ये गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यस के और सुनिधि चौहान की आवाज में गाया गीत यस दो अजनबी चले जा रहे हैं आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। अब हम चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ जो है आई एम द बेस्ट। यस, हमेशा हमेशा सोचना कि यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हो, ठीक है। यस, आपके बिना कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सबसे अच्छा हो, ठीक है। ओ मानी ही इन दासिया बुर में तुर नेत्र ओ तो और चलिए, इस गीत को सुनाने से पहले मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे के संदेश की तरफ। और संदेश आया है कुंगते ह्यान ध्यान रोंतिया आरजे सी एस सांग नवी खान हे ही लो श्या से क उ जल जा मन अले खबु अतलांग जरवे हुना हो सकबे म्या सु से खतिया अति आया अरुंतिया नि ओ कलो एंजॉय एम एम मे नि इन मेसेज दे हिमो हे क्या ह्याना जेम सी एस सांग दे पो ओम बे रिंग आ कन ड्यूटी हो तला नि चुआन कन इन कल सन फल लो नि मो चुआन नाम ही कंती थे एम एम आ नामानी हो अंग्यान मो चुआन। और यहाँ पर फ्रॉम नागालैंड यस आई गोट मैसेज हाय आरजे प्लीज प्ले अ ट्रैक कभी यादों में आओ रियली एंजॉयिंग योर शो एनी वे आई एम ऑन माई जर्नी सो विश मी सेफ जर्नी यस ओ वाओ एंड यस थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग अस अगेन एंड यस सेफ जर्नी ओके यस। और दूसरा संदेश आया है फिटनेस बॉय की तरफ से। फिटनेस बॉय लिखते हैं बॉस अ हिंदी अल्फाबेट कंथियम वे मंगसी लवा मेरा यहाँ टेक्स्ट पढ़ने वाला तो बिल्कुल सही इंसान है अगर वो मुझसे मुझसे कहे कि जाओ ओए अमलाओ ए फिटनेस बॉय जाओ आग में कूद जाओ मेरे लिए तो भी मैं भागूंगा नहीं ऐसा लगता है

यस बहुत खुशी मिली आपके संदेश को पढ़ के, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि फिटनेस बॉय जुगजुआंग रो हंदीचा इला इजुआ नि करिंग लौरे रेंगमो ख्वार खरु माते ओ खत्या गते खान मो गरिंग लौ गरिंग टॉप लौ हे हे थिल थि जो ओवर उचवाक मामा ओ असे नॉबे शिम शिम जवान अगले संदेश की तरफ बढ़ेंगे. अगला संदेश आया है अलजसा लौहियान वन लवान किशुआ कैसे हुआ ती इलो प्ले आ ए इश्क हुआ ओ इटाइप दान ही ओ मोटर का जुंगजान एंगे टाइप फुका हर ए मनी दरो बकना इश्क हुआ कैसे हुआ ती इलो प्ले आ गलोम लु तुक हिंदी ला आ मोय कती वे छुन नी आ कतलान लकलो आ गरोन कमेंट मन लो आ हे कदिंग जोक एंग छवन नुआम थे तक एम मोटर खलक लो लाया हंडिंग आर जे वी ली हन मैसेज मई चू गन फू लो गन चंग सांग छीन तक एम ओले चुआन मा दे अते ते चौंग थू ते रोन लंगा लेकिन दोस्तों में ये गीत पहले सुनाऊंगी फिर उसके बाद में आऊंगी आपके संदेश को पढ़ने के लिए. ठीक है यस आप कहीं मत जाइएगा हमारे पास 15 मिनट्स है. ठीक है तो चलिए आई एम द बेस्ट अभिजीत चक्रवर्ती की आवाज में गाया गीत सुनते हैं. यस आप सभी अच्छे हो. ठीक है आप सभी बेस्ट हो और कोई भी बेस्ट नहीं है. हम खुद को अपने आप को यस सबसे अच्छा मतलब समझना चाहिए. यस तो चलिए मेरी तरफ से एक मोटिवेशन इस गीत के साथ. तो ये गीत सुनते हैं आप सभी के नाम आई एम द बेस्ट.

Yes, I'm the best. You are the best, Dosto. Yes, we are the best. तो चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को गीत पसंद आया होगा मेरे साथ आरजे वेले के साथ. तो दोस्तों, हमारा समय भी खत्म होने वाला है. यस, खुद ही कल तक थी एक सेगमेंट भी का ख्यान तिरोजाम. और अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ. और मैं गीत सुनाना चाहूंगी, शायद ये गीत इस खंड का आखिरी गीत होगा. यस, प्यार कोई खेल नहीं दोस्तों, ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी दोस्तों को. बहुत ही खूबसूरत गीत है और बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों. ये प्यार कोई खेल नहीं दोस्तों, मैं नहीं चाहती कि आप किसी के दिल से खेलें. यस, अगर आपको प्यार है तो निभाइए. अगर मतलब झूठा प्यार किसी से मत निभाइए और मत करिए दोस्तों किसी से झूठा प्यार, ठीक है. यस, दिल बहुत दर्द होता है और मैं नहीं चाहती कि आप किसी का दिल दुखाएं, आपको मतलब आपको दुख हो किसी के कारण. तो चलिए, यहाँ पर संदेश है. तेई चौंग तो यान आज भी नेक्स का इतान ले सी असांग ते इतान ले पुईते इतान और रोंती अनि ओले वन फेल एम एम चौंग मादेंग अहियान सला करों थो ना. ए जान लम पंग मो था था मून मो था एंग लाई आज मिस आज भी एल छोर था छोर था खियान छोर था खियान ओ आ आ एन हुन आ हई ngai lo ke pon ka hai bi chering su ang che ran dani aman nuam em min hai don lo o min hai reng reng don lo hai roi ka ni lai ne tro chuan za ma hian isoi dik vl isak men hun chung hi dar kar som ni pali chung hi ni thai se du thu sam tur hi ani a ro dani za ma po chuan fitness boy hi messenger rong lang le a mera ya text par ni wala to sach me sabse best hai and यस, और आप भी बेस्ट हो फिटनेस बॉय, ये कभी मत भूलना, ठीक है. यस, तो हम जहाँ भी रहेंगे, जो भी करेंगे, हम जहाँ भी रहते हैं, जो भी करते हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, कहीं भी रहेंगे दोस्तों, मतलब अपने जो हमारे आसपास जो दोस्त होते हैं, साथी होते हैं, मतलब आप सोचना कि उन सब में ना आप सबसे स्पेशल हो, ठीक है. यस, नंग मानी का लविंदा सियाल रऊ कदीना निजू, ठीक है. यस, और वन ऑफ आर लिसनर फ्रॉम नागालैंड, यस आई थिंक ही इज गोइंग समवेयर, सो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि वो अच्छे से पहुंचे अपने जर्नी, मतलब जहां जा रहे हैं, ठीक है. यस, और हमें सुनते रहना, ठीक है. यस, और तो इस तरह मैंने आप सभी के संदेशों को पूरा पढ़ लिया है. और अगर विपिन हमें सुन रहे हैं, मतलब अगर मतलब मुझे पता नहीं है वो हमें सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो मैं विपिन से कहना चाहती हूँ कि सी एस सांगते खान, ओ उस दिन उन्होंने मतलब कहा था कि विपिन भी हमें मेरे सेगमेंट पे मुझे संदेश भेजे, हमें उनसे बातें करनी है. यस, तो विपिन अगर हमें सुन रहे हैं, तो अगला खंड किसका खंड है? आई थिंक यस, वेस्टर्न म्यूजिक का सेगमेंट है. यस, तो फिलहाल जब सी एस सांगते ही हाजिर होगी, तो विपिन उनको जरूर संदेश भेजेंगे, है ना. यस, तो चलिए, इस खंड का आखिरी गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, प्यार कोई खेल नहीं, कुमार सानू की आवाज में गाए गीत से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी. और जाते जाते दोस्तों, एक बात आप सभी से दोबारा कहना चाहूंगी कि प्यार कोई खेल नहीं है, प्यार बहुत ही स्पेशल है दोस्तों. यस, जो मैं प्यार आप सभी से करती हूँ और आप हमसे जो करते हैं, बहुत ही स्पेशल है दोस्तों. इसलिए प्यार कोई खेल नहीं है, किसी से मत खेलिए, किसी के दिल से मत खेलिए दोस्तों, ठीक है. यस, किसी का दिल दुखाना बहुत बुरी बात होती है दोस्तों, ठीक है. और मैं चाहती हूँ कि आप ही किसी का दिल ना दुखाए और हम भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, ठीक है. तो चलिए, प्यार कोई खेल नहीं, इस खंड का आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम.

मस्त है दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा। और चलिए, मैं आप सभी का इंतज़ार करूँगी FM से 100.7 पर। आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं यस आकाशवाणी आइजोल FM से 100.7 और हिंदी के खंड पे आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा। और हिंदी के खंड में आप सभी को हिंदी के गीत सुनाने के लिए फिर एक बार हाजिर है आप सभी की दोस्त अर्जे वियली। तो चलिए प्यार भरे गीत सुनते हैं, तेरी मेरी कहानी। अरिजीत सिंह और पलक मोछल की आवाज में गाया गीत इस खंड का सबसे पहला गीत हमारी दोस्त आरजे सी एस सांगते के फरमाइश गीत आप सभी के लिए और मेरी तरफ से।

तेरी मेरी कहानी दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गीत यस हमारी दोस्त आरजे सी सांगते की तरफ से फरमाइश किताब सभी के लिए आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस तेरी मेरी कहानी बारिशों का पानी बहुत ही खूबसूरत गीत था दोस्तों। तो बारिशों की तरह हमेशा प्यार एक दूसरे के साथ बरसाते रहे यस और हम भी बरसाते रहेंगे यस गीतों के जरिए और यहाँ पर चलते हैं आपके भेजे गए संदेश की तरफ गीत सुनाने से पहले। और संदेश आया है यस अमोस की तरफ से संदेश आया है। उन्होंने लिखा है गुड आफ्टरनून खूबसूरत आवाज वाली आरजेवीएल अमकिन नरौ पुई कती एफएम जो ओया मैसेज कलो थोन थिन अचंग ह्यान को व्हाट्सएप अ हैंक रेंग मया को ऑनलाइन थे वक्त लो अब मंग वे चुत्या ओम थे दो नमी चुवांग चुआन मैसेज

तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत, बहुत ही सुंदर सा गीत, यस, अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में गाया गीत दुनिया।

या बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो अब हम चलते हैं एलबी रिंटले का फरमाइश गीत पी लो। यस, मोहित चौहान की आवाज में गाया गीत, चलिए सुनते हैं आप सभी के लिए मेरी तरफ से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीत रहा होगा दोस्तों। यस, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी का दिन अच्छे से बीता रहे। यस, और जिंदगी में कभी उदास मत होना दोस्तों। अगर जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि आप सभी प्यारे दोस्तों से कि अगर आपके पास कोई भी बातें करने वाला कोई भी ऐसा दोस्त नहीं होगा तो भी आप ये मत भूलना कि FM ZAWOY आप सभी के लिए, यस FM ZAWOY 100.7 आप सभी के लिए हमेशा, यस बातें करने के लिए रेडी है। यस, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। यस, आपके आपका ख्याल रखते हैं अगर आप हमें सुनेंगे तो, ठीक है। अगर आप हमें नहीं सुनेंगे तो आप हमारे प्यार को नहीं पा सकोगे, हमसे बातें नहीं कर सकोगे। तो ये मत सोचना कि आप दुनिया में अकेले हैं। तो उन सभी अकेले दोस्तों के लिए ये FM ZAWOY 100.7 हमेशा आपका साथ देगी, ठीक है। तो चलिए सुनते हैं एलबी रंटे का फरमाइश गीत पी लो मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा एलबी रेंटे का फरमाइश गीत पीलू? यस, मोहित चौहान की आवाज़ में गाया गीत बहुत ही सुंदर है ना दोस्तों। तो चलिए, हमारे पास बहुत समय बचा है, हम चलेंगे आपके भेजे गए संदेश की तरफ। और अगला गीत हम सुनेंगे आले। यस, ये भी हमारी आपकी आरजे सिया सांगते ने आप सभी के लिए पेश किया है, फरमाइश की है दोस्तों। और यहाँ पर अमोस लिखते हैं कि चुआन थिल पखत तूना मैसेज करोन

ka ron thon na hi ka number ani lawa ka chian pa number ani hi FM zo oi ka ngai poi mo zia hi ishe thiam ve em em mang ti ro she thiam lu tu ke she thiam lu tu a ma kha ka ti reng ani are kya ho gaya moske shakal ko jab maine aapke ye dp ko dekha to main shock ho gayi ki are kya ho gaya amos to aisa nahi dikhte the तो अभी जिस तरह आपने बताया तो मतलब मुझे पता चला कि ये आपका नंबर नहीं है लेकिन क्या हो गया आपके व्हाट्सएप को ना अमोस जल्दी से ठीक करो ना तो चलिए सुनते हैं आले बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम

तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये बहुत ही मस्त वाला आले गीत? हमारी यस दोस्त आरजे सिया सांगती की तरफ से फरमाइश गीत आप सभी के लिए, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो आप सभी हमें हमें मालूम है कि आप हमें सुन रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब आप हमें एफएम 100.7 पर संदेश भेजते हैं, हमसे बातें करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक बहुत ही आप सभी के लिए एक सुंदर, मतलब यह सुंदर अच्छे अच्छे गीत आप सभी के लिए प्ले करें दोस्तों, सुनाएं आपको। तो अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, दिल कह रहा है। यस, कुणाल गांजा वाला की आवाज में गाए गीत। चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मोहित चौहान की आवाज में गाया गीत यस दिल कह रहा है तेरी धड़कनों को चूम लो। यस, जब हम किसी से बेहद प्यार करते हैं तो हम सब कुछ भुला देते हैं ना दोस्तों, और उनके बारे में ही इतना सोचते हैं कि हम दीवाने हो जाते हैं, है ना, राइट? यस। तो अब हम अगले गीत की तरफ बढ़ेंगे और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। यस चलो ये गीत सुनते हैं, हुआ झुमका। यस, झुमका गिरा रे मेरी तरफ से ये गीत आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, आप सभी को पसंद आया होगा ना झुमका गिरा रे। वह झुमका, यस, उसी उसी का झुमका जो हम बहुत बेहद चाहते हैं, उन्हीं का झुमका कहीं गिर जाता है तो हम उन्हें ढूंढने लग जाते हैं, और जब हमें मिल जाता है तो हम उनको अपने पास रखते हैं और महसूस करते हैं कि वो हमेशा हमारे पास हो। ऐसा आपको, मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके पास? तो चलिए, यहाँ पर संदेश आया है कुंते हियान अमोस गे जल जामा मेल छिया इति जो करों तीनी कुंते हियान आ अनमेल छाक ती वे वे ओ कुंते चुआन नंग मा फे फे चु मेल छाक ती बेर छे ओ चुआन अमोस हियान अमोस ने लिखा है कि मैं ड्यूटी पर लाइमस्टोन माइंस में हूँ। मेरे ड्यूटी खत्म होने वाली है, 2 PM तक है। हमारे ड्यूटी खत्म होने से पहले अगर आपकी प्लेलिस्ट ये गीत सॉन्ग ऐसा पहली बार हुआ है, फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, सिंगर सोनू निगम, हमारे मौसम भी गर्म है और थोड़ा सा गर्म करने के लिए खास कर मेरे दोस्त ही हिकमत अली, अब्दुल अली, गोविंद मुखिया, राहुल राजपूत, इंद्रपाल शर्मा, ऋतिक डोनाल्ड, और खास कर डेडिकेटेड करता हूँ अभी जो संदेश पर रही है। अलो कलो जायपुर ने समय कुना लही चू अथियाम अनी अरोंती अनी अमोस ह्यान। ओ अमोस की तरफ से बहुत ही प्यार भरा संदेश आया है और उन्होंने गीत फरमाइश की है अपने दोस्तों के लिए, और हम सुनेंगे, ठीक है? और केंगे ते ह्यान वो इन चुआ तो चुट चुट ड्रेंगा बॉय ठाक रिया वाई ठाक तुई थे मे उलाव अनी अचुतिया लो के ते एंग तिंगे ले ओ खलम पंगा सिग्नल छलो मनी ले ओ ओ ले एंग पोचु नि से कन लाउ शिल छिन दो निया ओ। तो चलिए सुनते हैं अमोस का फरमाइश गीत, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ओ जब हम 17-18 साल के थे तो हमें तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा क्या हो जाता है 17-18 सालों में, हमने तो फील किया किया ही नहीं, हम तो छोड़ के निकल गए। तो चलिए फिलहाल सुनते हैं अमोस का फरमाइश गीत हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से, ऐसा पहली बार हुआ है, आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ आरजे वेली के साथ हिंदी के खंड में आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को गीत पसंद आया होगा, हिंदी के गीत दोस्तों। और इस गीत के बाद हम सुनेंगे इस खंड का आखिरी गीत और हम वापस आएंगे हिंदी के और दूसरे यानी हमारे आज के हिंदी के आखिरी खंड को लेकर 2 बजे। ठीक है दोस्तों, यस 2:05 पर मैं वापस आऊंगी पूरे 2:30 बजे तक आपका साथ देने के लिए, आपको गीत सुनाने के लिए। यस, तो यूं ही आपका समय अच्छे से बीतता रहे दोस्तों। चलिए, आप कभी जिंदगी में मायूस मत होना, ठीक है? यस, हमेशा आप अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, किसी दूसरे के लिए बुरी बात, ठीक है, बुरी चीज़ें मत सोचिए दोस्तों, अच्छा काम करिए, आपको ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलेगी, ठीक है? और FM से 100.7 के साथ भूलना मत हमसे बातें करना, ठीक है? यस, गीत सुनना मत भूलना। हम भी आशा करते हैं कि हम आपका दिन समय अच्छे से बिताते हैं। यस, मतलब अच्छे से बिताने के लिए हम आपके लिए मतलब पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, ठीक है? यस, तो चलिए सुनते हैं तारजन इस खंड का आखिरी गीत, और तब तक के लिए दोस्तों अजय वीले को इजाजत दीजिए। तो मिलते हैं 2:05 पर, ठीक है दोस्तों? तो आप सभी मतलब चाय पी लिए होंगे, तो हम भी चलते हैं अपने दिन की चाय पीने के लिए, कुछ कुछ खाने के लिए। तो चलिए आप भी खाइएगा, ठीक है? तो चलिए, ये आखिरी गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

हेलो, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहर आप सभी प्यारे दोस्तों को। आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM ZOI 100.7 दोस्तों, और हिंदी के खंड पे आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। और आपके साथ हिंदी के खंड पे साथ जुड़ी है आप सभी के लिए दोस्तों RJ VLE, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को दोबारा मेरे साथ हिंदी के गीत जरूर पसंद आएंगे दोस्तों। और आपकी दोस्त RJ VLE आप सभी के प्यार भरे संदेशों का इंतजार करेगी, क्योंकि आज का मतलब आज के लिए यस ये खंड आखिरी खंड है दोस्तों। इंतजार रहेगा आप सभी के प्यारे संदेशों का। तो आइए सुनते हैं यही होता प्यार, हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान के आवाज में गाया गीत आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यही होता प्यार क्या हिमेश रेशमिया और यस सुनिधि चौहान की आवाज में गाया बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यस, प्यार ऐसी चीज है ना दोस्तों, जिसमें हम खुद को भूल जाते हैं और उन्हें सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बाद में हमें मतलब उनसे मतलब जिस इंसान से हम इतना प्यार करते हैं उस इंसान मतलब उस इंसान को हमसे प्यार ही नहीं होती है और हमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। तो मतलब ये एहसास दिल को बहुत ठेस पहुंचाती है। तो इसलिए अगर आप किसी से मोहब्बत करेंगे ना दोस्तों, वही मोहब्बत आपको मिले, यही हमारी दुआ है आप सभी के लिए। तो चलिए अब हम सुनते हैं अगला गीत तेरे संग, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दो सौ उम्मीद है आप सभी को। मेरे संग चल जरा, सुनिधि चौहान। क्या आवाज़ में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और यस, सुनिधि चौहान और संदीप की आवाज़ में गाया गीत था। तो चलिए अगले खंड की तरफ चलते हैं, और मतलब खंड मतलब यानी दूसरे गीत की तरफ। और ये गीत मैं सुना चाहूँगी आप सभी को, हमारे दोस्त जिल सामा का बहुत ही मनपसंदी गीत है, और उन्होंने संदेश भी हमें लिखा है। उन्होंने लिखा है कि आज भी एल वो इनताना इसमें टॉप खा ले रूप मैले अखम ओम लो छीन ले अखम ओम छीन लो अखम ओम लौ छीन ते ए नेक्स्ट सॉन्ग इतान चौ लुआ तकिन हो अंग चे ओ रुन तीनी जाम हियान चुन कुंग ते हियान चन चिन बु छियार पा इन का लौ ngai tha che o run ti boka ole kalom lu tuke o chuan fitness boy hian boss bai dam te kin le run ti boka e kanin mu vat le tura be se phot me ang o to chaliye sunte hain is khan ka dusra geet दीवाना है ये मन मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों के लिए।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के आखिरी खंडों के गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। जी तो करता है कि आपको यूं ही गीत सुनाते जाए, लेकिन क्या करें दोस्तों, समय की पाबंदी के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगले खंड पे आपके साथ जुड़ने के लिए, आपको वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए आपके दोस्त आरजे पुईते हाजिर होंगे अपने आखिरी खंड को लेकर। और मैं इस आखिरी गीत के सुनाने के बाद मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगी दोस्तों। और जैसे कि मैंने कहा था कि अलविदा कहने का मतलब है कि हम जल्दी मिलेंगे। तो आप भी अपना ख्याल रखना और हमेशा आपको समय मिलने पर FM 100.7 को सुनिएगा और एंजॉय कीजिए दोस्तों। हमारे छोटे से पल को, थोड़े से समय को दोस्तों, इस छोटी सी जिंदगी में आप अपने इस समय को, पल को खुशियाँ से भर दीजिए दोस्तों। अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलिए, ठीक है। तो चलिए, ये आखिरी गीत आप सभी के लिए मैं पेश करना चाहूँगी और आरजे विली की तरफ से दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखना और आरजे विली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।

0: केंद्र है, 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो, आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टडॉटर और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओरपो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। नॉर्वे से और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले।
1: नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। और ब्यौरा रोम में मौजूद हमारे संवाददाता सुपर्णा भाटिया से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे किउल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। कल रात चेन्नई

इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच

व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय

मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कुनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, केएल राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल हैं। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ए हम सफर मेरे आपास मेरे और जीले जरा ओ कमाए कबूला ककियांग आलो कल्ला हे कनहुनते ही इमंग दूनंग तीना अंग देव अनिया खा लाखा ओ थे अंग अंग इन रोन ट्रांसलेट कन हन तुम ले ngati ro तो बर्थडे है अगले गीत की और मिंग मोया का संदेश है जो हमें ये लिखते हैं कमी का रंग सिंहाल चा तुंगे रंग तिदे कुआल वेल तेरो सेरेंग सिया ओ मिंग मोई ते आ चलिए आज की रा आज की जो शाम है पूरी रात जो है हम दोनों के नाम प्ले फट में ओ तो अगला गीत जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एजेंट विनोद फिल्म का गीत है जो कि मुझे भी बहुत बहुत बहुत ही पसंद है और इस गीत के साथ गाना कितना मुश्किल है ये आप गाकर देखिए तब पता चलेगा श्रेया घोषल और अरिजीत सिंह की आवाजों में राबता

तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये गीत? है ना, बहुत ही सुंदर गीत के होने के साथ साथ बहुत बहुत बहुत ही क्या कहते हैं, आपने इस गीत को गाने की कोशिश कीजिए, कितना कठिन है ये गीत। तो छमी नहीं थी मैं थे नहीं है ना इन नन सक तक तक चुनमो हर लुट तक सक पुई का तुम छी ना मो आ आ आ कति लगी थे ही लाओ थे ही नम छमी लो शुरू मैं मोई थे ही चुनन थे ले मैं करें तेरो लो बाई हाथ ना न सतो एम ओ कन प्ले न सा कन प्ले मुन वे बॉक्स या तेरो और साथ में ही उनका ये संदेश आया है कि आज या मोई थे नमस्ते ड्यूटी नो अमले फ्याका तारों तेनी मैं मोई थे ही ओ tikhan miron shilsel har satna ron amani chuan ingi mani thil boy am cha miron shilsel don ne a lom am lutto izara tikhan smooth takin gan kal le don ani to hum jo agla geet sunane ja rahe hain aapko Sukhvinder Singh ki awaaz mein hai black aur ye hai film Raid ka साथ में एक और संदेश आया है गुड बॉय की तरफ से ओ गुड बॉय हिच ओ भांति छठीन तक एम हिंदी अर्जन नहीं देता फिर दिख चतर नुआ में तेरो मैं तभी नेट उसे थी निरिंग मत मिनी तेरो नहीं हिच एसएमएस उन तक पति पूर्ण जब हम लोग हम चीन तक एम हमें भी हमेशा आपके संदेशों का इंतजार रहता है और ये जो आपके संदेश तो है जो हमें चलने के लिए हमारी इस ड्यूटी में चार चांद लगा देता है रंगीन करता है और इन्होंने ये भी लिखा है कि आप वो इनसे चू को उम्पुई निलेंग चियांग ले मैं चू मिल मिल से हूँ ने मिल से हूँ न दिया मो मिल से हूँ तो ये नहीं प्राइमरी चैनल संचिन थर हिंदी इंग्लिश ले मिजो कहीं इन कहाँ तक कोई इतने कहीं बेरा भान लो मम चीन तक यो बहुत बहुत शुक्रिया गुड बॉय आपके संदेश से हमें ये पता चलता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को कितनी अहमियत देते हैं बहुत बहुत शुक्रिया ये गीत जो है आपके नाम करती हूँ

तो दोस्तों गीत सुन रहे हैं आप सोना महापात्र और रविंद्र और उपाध्याय की आवाजों में जिया लागे ना तुम बिन मोरा इतल लो छुआन इन कानून ही अलिम थे लो अनि ती नलम पंगनिया ओ लुंग लेन नला अनि छु तो इस वक्त इस गीत को हम अर्पित करना चाहेंगे उन सभी जनों के लिए जिनका जिया अभी लागे ना रहे ओ लुंग लेन मी जोंग जोंग ते तांग करन थांगे ओ ओ अधिक चाहते रोमिंग मोई ते अनि करिंग मासे ओ नेक्स्ट आज अनि मोई चाउजे तो रंगाये ओ कन लतुल कुंग चिखा निचिया लो बतरो मासे ओ मोई वेथो लो मी क्लेम तल ते चुवान तरो तो अगला गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत बहुत ही प्यारा गीत है मालिनी अवस्थी के की आवाज में है ये दिल मेरा मुफ्त का और हाँ दिल मेरा मुफ्त का तीजा निन है कथिन लुंग ही अथोन अथोन नी अथियो अथोन इन कथिन लुंग ही कपले ती नंग दे अन्यंग चो का ओ दिल मेरा मुफ्त का ये जो गीत है एजेंट विनोद का फिल्म का गीत है चलिए इस गीत के साथ थोड़ा सा मचल जाते हैं

तो दोस्तों, आप गीत सुन रहे मालिनी आवाज थी कि आवाज में दिल मेरा मुफ्त का। और हम बढ़ते अगले गीत की ओर, जो कि होगा इस खंड का आखिरी गीत। ये है जन विनोद फिल्म का गीत। हमारा हम जो अगला गीत पेश करने जा रहे हैं, राहत ओ नीरज श्रीधर, अदिति सिंह शर्मा, शीतल शीतल और बर्बी के आवाजों में थे ये गीत आल डू द टॉकिंग टुनाइट। और ये जो गीत है, मैं आप सभी सभी के नाम अर्पित करना चाहूंगी। तो इस वक्त सुन रहे हैं आप FM जो वही 200.7, और आपकी आरजिया मोहिते आपसे इस खान के लिए अलविदा लेती है। हम वापस आएंगे 6 बजे बहुत बहुत ही सुंदर फिल्मी गीतों के साथ। ट्यून में रहेगा। अब से थोड़ी देर बाद आप अपना वक्त बिताएंगे अपनी आरजे सुजैन के साथ बहुत बहुत ही सुंदर वेस्टर्न म्यूजिक सुनकर। तो चलिए, गीत आप सभी के नाम।

नमस्कार आदर स्वागत है आप सभी का एफ एम जवाई 100.7 पर। आरजे मोइते आपके साथ है अपनी दूसरी खंड पर। जी हाँ दोस्तों, मैं इस खंड में लाई हूँ तीन फिल्मों के गीत, और वो फिल्में हैं ब्लैक फ्राइडे, इंसान और हेरा फेरी। चलिए दोस्तों, पहला गीत सुनाने जा रही हूँ आपको, बहुत ही जबरदस्त गीत है, और इस फिल्म के जो गीत के जो टाइटल्स है बहुत बहुत ही भयंकर है। और मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, बादशाह इन जेल, बादशाह इन जेल, जेला ललपा बिरखा तीनानिया और चाने चाना लल बेरन ये मो तिरकान ये मो जेला हिन तानी चुंगाई बैठी नम तेरो कोंग दिखलो जो तो इस मामले में है ये फिल्म, जरा देखिएगा ये फिल्म कैसा है, कभी मौका मिले तो जरूर जरूर देखिएगा।

ni zani som nga pasari te ten nun na ancha na chuan mi sang khazali velin hliam an tuar bokani in hamlo ka samanve mumbai sthit at antarashtri sangathit aparadh giro d company ke sargna daud ibrahim ne kiya tha o aajkal mujhe bhi aise film dekhne ka dekhna acha lagta hai jo ki ek sachi ghatna par aadharit ho in nibe em o tunai chu true story in based dewa film an ron siam hi ke pon hunom kati thei em em maya enge film dang hei phua chok ang chi deu hi a chang hi chuan in hei ka en tha pe bak lo thin ni a phua chok ro ro chuan south indian movie mu nam kan ti le pek mai mai a o yom lo lu tu ki mu nam kan ti thin ani a chumi ti la wa chuan based on true story sang chi ho hi chu mu nam ve kabhi mauka mile to zarur dekhega black story or black friday film hai ye aur isme स्टार्स है के मेनन पवन मल्होत्रा और आदित्य श्रीवास्तव जरूर देखिएगा चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की और इंसान फिल्म का गीत सुनाऊंगी आपको ख्वाहिश ख्वाहिश का मतलब है ख्वाहिश ओम जाचू थिन्नुंग दुजोंग थिलचाक जोंग खत्यांग सही ना कहा अन्य

Ana satheyang berin min mangai roti hi kathin lung du zong kadu ber ani e ti nania elze sailo ka sandesh aya he inhone bhi likha he dikcha tar elze ke pasat indian film hi munam ka ti ka pui theisi a ba chang tu nun mel tha theisi dikcha tar ai person te ma se je ta pui tran chak thei ro pui bok se tro tiang te hi han ni ve thei a oi om lo tu ki munam ka ti kha तो बढ़ते अगले गीत की और बहुत ही प्यारा गीत है जो मैं मोहिते पोखर उनमें कर करी थी जो किशोर कुमार महेंद्र कुमार की आवाज में है।

0: नहीं,
1: हम हैं तेरे साथ।
0: बिल्कुल,
1: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये तेरी।

Sum hi chu poimo ama se sum boi tan hi chu athalo ani tiru vakt ki hera feri khovela po hianin enge kan din hun hi a in angle angai reng theilowa tuna re thei taka kan nei te po hi nakina chuan ke ni an nanna lian thegeni tika sha in tu mahi ti chhelu la tiru to dosto ye geet hai kishor kumar mahendra kapoor kumar ke awazo me vakt ki hera feri ji ha hera feri jo 1976 का फिल्म है और इस फिल्म में है कौन कौन से एक्टर्स है सुन लीजिए अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना सायरा बानो ते असरानी मकमोहन और गोगा कपूर इन्होंने इस फिल्म में कास्ट किए हैं अब मुन मंग हुनलाई मी ते खचुम त्यांग इंगे अमिताभ ते हुनलाई मी ते फेगे सो मुनम दोन ती खाचियांग सा कभी मौका मिले तो जरूर जरूर देखिएगा इस फिल्म को बढ़ते अगले गीत की और हमारा अगला गीत जो है ब्लैक फ्राइडे का एक और गीत सुनाऊंगी आपको ट्रेनिंग

तो सो ये जो हमने आपको म्यूजिक सुनाई है ब्लैक फ्राइडे का है। हम बढ़ते अगले गीत की ओर। इंसान फिल्म का गीत सुनाऊंगी, रेन रेन। इंसान फिल्म जो है 2005 का एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसमें कास्ट किए हैं अक्षय कुमार, अजय देवगन, ईशा देओल, तुषार कपूर और लारा दत्ता है इस फिल्म में। मुनम ले अजय देवगन ते अक्षय कुमार तीन चंदो ही चंद मुनम तू रंगाई तप में। कभी मौका मिले तो जरूर देखेगा फिल्म को। तो बढ़ते हम अपने अगले गीत की और, इंसान फिल्म का रेन रेन। जी हाँ, बारिश का मौसम है अभी फिलहाल तो। इस वक्त हमारे स्टूडियो के बाहर बारिश नहीं हो रही है शायद, लेकिन सुना रही हूँ आपको बहुत ही सुंदर मॉनसून का गीत, रेन रेन। तो दोस्तों, अभी से मैं कहना चाहूंगी कि 6:30 बजे आप सुनेंगे समाचार, जो कि होगा सीधा प्रसारित प्राइमरी चैनल से, और 6:40 मिनट में आरजीएम के साथ साथ वक्त बिताएंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि रात के 8:30 से लेकर 9 बजे तक हम आपके साथ लाइव प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं फेसबुक में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग फेसबुक में ऑल इंडिया रेडियो आइजोक फॉलो कीजिएगा और जितने भी लाइव प्रोग्राम हैं वो आप देख पाएंगे और इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। 8:30 टंगतार कुआ इनका रखन का नॉन लाइव तो ना कचो इस कल खान मोई तक तक टिकन गाय खेदो नहीं हो ताचो अन एफ बी अखन जॉइन थे तो इनकन सो हाँ चेनी।

हेलो, नमस्कार, आदार आदार आभार। आप सबी का स्वागत करती हूँ FM जो वॉइस 100.7 पर। मैं हूँ आपकी आरजे अमोइतेई। और दोस्तों, जिस तरह आप सब जानते हैं कि आज रात, मतलब इस वक्त मैं FB में लाइव पर हूँ, तो हमको उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वक्त FB में आ जाइए और हमारे इस लाइव प्रोग्राम को देखने के लिए मैं सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जिस तरह हमने कहा था कि ये जो खंड है हमारा, इसमें मैं आपको सुनाने वाली हूँ अपने पसंदीदा गीत, अपने चॉइस के गीत। तो दोस्तों, पहला गीत सुना जा रही हूँ मैं आपको, मेरा बहुत बहुत ही प्यारा, मुझे ये गीत बहुत बहुत ही पसंद है, जिंदगी कुछ तो बता। जी हाँ, और ये है फिल्म बजरंगी भाईजान का। हाँ, हम में से कई लोग जानते होंगे, इस फिल्म को देख भी चुके होंगे। सलमान खान है इस फिल्म में, करीना कपूर भी है। एक जो है फिल्म चुंगचांग हिटलेम कंट्री से होगा, टोंग थे लो पाकिस्तानी नौ पंक्ते मई ही इंडिया आखा नरुन बहु लउमेया खा खा इ अति तुर निया इन सलमान खान हियान इन हिम तकिन अखुआ खा वथेन पुई अतुमनी चुमी चुंग चांग चु निया हे फिल्म हे मुनम एम एम ए सलमान खान चन्ना अलो निवेले जेल बुक ने हे मुनम लो थे लो तिरु। तो दोस्तों, गीत सुना रही हूं मैं आपको, सबसे पहला बजरंगी भाईजान।

तो दोस्तों, आप गीत सुन रहे थे जिंदगी कुछ तो बता। सलमान खान है इस फिल्म में, बजरंगी भाईजान फिल्म का गीत है ये। और हाँ, यहाँ पे आपके संदेश आए हैं ओमेगा सांगते का। ओमेगा सांगते तू ना हियानिन एफएम जो ओ ही एफपी या कन लाइफ निया ओ इलो लूट वेदोनिया ये इंटिंग एकन तीखा एफएम ओ All India Radio Aizawl kha FB a kan page kha lo like kula khata tang khan in e tuna kan program hi life in a life in min muthei don ti na ni chu Omega sang te likte FM zo ORG a hian o aba han lo bang chin tak em tuna o ka du e play tour itan liao liao ron tia o Omega he hi i nang ma tan po karon la ni o chuanin heta hianin seni zadeng hianin PC dal ruat sang si phir veng lu na mi ta ni thana ti ber kha lo play sak ro ron ti poka o te reng mei karon play sak le don ani ate a tuna adota hla ka play le tur hi moi in ti don ti ka sha chuwan chuanin anek sa hla kan play tur hi jo me गीत आपको पेश करने जा रही हूँ वो है सुकून, अरिजीत सिंह के बहुत बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में। चलिए दोस्तों, हम और आप सुकून से इस गीत को सुनते हैं।

तो अभी जो आप सुन रहे थे सुकून, बहुत ही प्यारा और सुंदर गीत था। हमको उम्मीद है हमारे श्रोताओं अभी तक अभी सब हमारे जितने भी श्रोताएं हैं सभी को पसंद आया भी होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर। बहुत प्यारा और सुंदर गीत सुना रही हूँ, जेसिका छंगते ले आते या आते खेते वही जी देखा इन पनीतान है लाही करुण लान वे बोके ओ। और जितने भी लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं और हाँ FB के थ्रू हमें देख रहे हैं, आप सभी सभी के नाम। चलिए हम और आप सुनते सनम पुरी और जोनिता गांधी के बहुत बहुत ही सुंदर आवाजों में तेरी आंखों से।

तो दोस्तों, हमको उम्मीद है ये भी जो ये जो मैं मेरा चॉइस था, जो गीत है, आपको जरूर जरूर पसंद आएगा. खास करके जैसे कई ले आते हैं, ख्यांग ते वाई जीते खा निन मो यंती करिंग ओ अन ट्रप दे मई थे बो कनी ते हंती लत्र अन मोय तिल तो खालो ट्रप दून फेर से त्र. सो अदिन अगला जो गीत मैं आपको इस सामने पेश करने जा रही हूँ है रोमांटिक लत तो कमो अरुण मोय कत्या प्ले कत चोइस का दालाइन कन छियन पा पखा थिया ने ना दूल तो का हे लाही ओ का चोइस ओ मलोंग कंतिया तु एमोनी तु न कोलकाता जिन मे तान खानी न रोन थंग वे नि चु ओ कोलकाता जिन मे कन ओ मेम ओ ओ अथंग तु चुमो रिकी या निया कन छियन पा कन बोस थी न निया मो अलुंग लेंग वे एमोनी करिंग हेतियांग एम एम हियान अलुंग लियाम अंग तिंग एन पो हि कशे लोवा आ खै अलुंग लेंग नि तेशिया टॉप चुवांग सोनिन रिकी या ले कोलकाता जिन मेक तान यानिन हे लाही कन रुन लाने ओ तो सुनते हैं दोस्तों अगला गीत जो मैं पेश करने जाओ. क्या मेरी याद आती है म्यूजिक इन नवटंग अहला थू इन नवटंग स्वानी तरो लुंग लेन थाक दोन तुक इंगे हे मिन गाई वे छी नेम तीना ओ तो नखन लो इंगे तो मैं करिंग कोलकाता लंग तंग.

0: जो गीत आपने सुना था वो थी क्या मेरी याद आती है। इस फिल्म में अक्षय भी है, तो हाँ गारंटी देती हूँ कि बहुत ही अच्छा होगा फिल्म, मजेदार भी होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर, बहुत ही प्यारा और जानिया तेरा ही, ये गीत भी बहुत बहुत ही सुंदर है। हमको उम्मीद है जो तुम मेरे हो, अनुव जैन के द्वारा है ये गीत। इस गीत को रिकी एले तू ए मनीतान खान कन्नो नान ले
1: कुछ भी ना
0: कोलकाता जिन
1: मांगू
0: में कन्नो नान लोगे,
1: कभी
0: और
1: मैं जो
0: जितने भी हमारे
1: तुम
0: श्रोताएं हैं इस वक्त जो हमें
1: मेरे
0: FB में लाइव में देख रहे हैं, आप
1: हो
0: सभी के नाम भी करना चाहूंगा।

तो दोस्तों आप गीत सुन ही रहे हैं अनुप जैन के द्वारा जो तुम मेरे हो, और इसी अंतर्गत ओमेगा सांगदे का संदेश आया है जो हमें देखते हैं एफबी लाइव सुकोम ना अटंग चुआन अनुने पे मेरंती कर्षत याम हाल ओ एसएमएस पो आ इंथोन मुआंग ले अनि रंतिया हुन मन नुआम ले अरंतिया का बहन लोम तके ओ खाति चुंग चुंग खा निये मेसेज ते मिन रंथोना गुड बो हियानि नो अरन स्क्रीनशॉट ngat ne yo ka ban lom chin tak em itna pyar dene ke liye bahut bahut shukriya good boy aur yahan pe aaya hai chaliye dosto hum badhte hain hamare agle geet ki aur agla geet jo main sunane ja rahi hu aapko humko ummeed hai ye bhi aapko zarur pasand aayega janiya hai mahakshay chakrabarti diya bajpai hai isme sidhat basu

तो दोस्तों, हमारे पास केवल 7 मिनट रह गया है। आप सुन रहे हैं FM जॉय 100.7। मैं हूं आपकी आरजे मोहिते। इस खंड के लिए आपसे अलविदा लेती हूं, और जाने से पहले एक और गीत आपको जरूर सुनाकर जाऊंगी। चले ये जो है गीत आ भी जा, इसमें लकी अली है और मुझे ये गीत बहुत बहुत ही पसंद है। सुनिधि चौहान और लकी अली के आवाज़ों में है सुर, द मेलोडी ऑफ लाइफ फिल्म का गीत है। और जो भी हमें इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आप सभी को मैं निमंत्रण देती हूँ कि अगली बार जब हमारी ड्यूटी हो या फिर कोई लाइव प्रोग्राम हो तो ज़रूर हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ।

हेलो नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत करती हूँ एफएम द वॉइस ऑफ द सम लव साथ पर। दोस्तों मैं हूँ आपकी आरजे अमोइती और ये मेरा आखिरी खंड है इस ट्रांसमिशन का। और दोस्तों इसके बाद हमारी आपकी फिर से कब बातें हो ये तो सिर्फ खुदा ही जाने, इसलिए अपना जो ध्यान है पूरा हमारी ओर लगा दीजिए। बहुत बहुत ही सुंदर गीत सुनाने वाली हूँ आपको। कुछ फिल्मों के गीतों का कलेक्शन है जो कि अपने जमाने में बहुत ही हिट हुए हैं। 90s का गीत सुना रही हूँ आपको, कहीं आग लगे लग जावे ताल फिल्म का गीत है और इस फिल्म में है ऐश्वर्या राय और आवाज है आशा भोसले और A.R. रहमान के। और दोस्तों मौका मिले तो देखिएगा इस गीत को अपने YouTube में। ऐश्वर्या राय मेल छत में पाका लम थिया में मो सुबान सोनिन इन लो एम दे दोनिया ता इन लो कहीं आग लगे लग जावे ताल फिल्म में। ओ

सुंदर है ना दोस्तों। अगर इस गीत को सुनते सुनते आप YouTube में देखिए इस फिल्म को, मतलब इस गीत को, तब आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर है ये गीत। ऐश्वर्या राय थियम एम एम लाम ही मो अब मुंह नम तो अलाम ही। देवदास फिल्म में भी जब उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ दोनों नाचे थे तो अब मूवी अडेंस मूवी अब मुनम बिक रिया ध्यान कर माधुरी ये थियम तेरे निन्मो। तो दोस्तों अगला जो काउंटडाउन हिट्स गानों में से एक है तेरी चुनरिया। तेरी चुनरिया सुनाऊंगी मैं आपको, सलमान खान और रानी मुखर्जी है इस गीत में और मूवी का नाम है हेलो ब्रदर। मैंने भी देख चुकी हूँ इस फिल्म को। सलमान खान ने चन्ना ले रानी मुखर्जी ने चन्ना जो मुनम लो थे लो मो जो वांग चुआन इन लो गाय थे तो।

जी हाँ दोस्तों, हेलो ब्रदर मूवी का गीत था तेरी चुनरिया दिल ले गई। सलमान खान मूवी है चित्र रचा मुनम बिया चांसन कॉमेडी है मचान रोमांटिक है मैं या ओ मुनम ने रानी मुखर्जी ते ओ रानी मुखर्जी ते नेना काजोल ते नेंती वेल ते मो अन कॉम्बिनेशन ही था मैं हूँ लाइक खान इन। तो यहाँ पे है संदेश दुर्गेश नगनपुरे और फैमिली की तरफ से। हमें लिखते हैं, गुड इवनिंग आरजे सिस्टर, नमस्कार, हम आपका प्रोग्राम मोबाइल एप्स पर सुन रहे हैं, बजाते रहो, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी मंगनी पो कहेंगे मिदंग पो अपांगाया मोबाइल ओमसा एफ एम खमी खा इयरफोन गाई खाक गाई ओम चिंता खमी खा गाई खेर लो खानी एप्स न्यूज ऑन एयर खा डाउनलोड तो लमो खमी थ्रू खा नि तिखा नि इयरफोन इंग माई लोबी नाई खाक थे निचु हे लक चंग इन कन थ्रियान टेपो हिया निन अन लो गाई थवे निचु खत्यांग एप्स मंखन मो। और लिसनर से दुर्गेश नगनपुरे राधेश्याम नगनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। तो दोस्तों दुर्गेश नगनपुर उनके नगनपुर उनके सारे जो दोस्त हैं उनके उन सबके नाम और इन्होंने एक गीत को सुनने की चाहत की है। चलिए हम सुनते हैं हमारा अगला गीत, चलते चलते फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग है अभिजीत और अलका याग्निक के बहुत बहुत ही सुंदर आवाज में और एक्टर्स है शाहरुख खान और रानी मुखर्जी।

चलते चलते फिल्म का टाइटल सॉन्ग हमको उम्मीद है दुर्गेश और उनके साथी सब खुश हुए भी होंगे। और मिनल अहमद का संदेश है और ठीक है। मिनल अहमद फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट करीमगंज से है। फर्स्ट आरजे ऑल ओ जो मेरा सभी दोस्तों के लिए डेडिकेट रहेगा। खरीद सकते अगर उसका साथ तो अपनी जिंदगी बेच कर भी खरीद लेते। अफसोस मोहब्बत कीमत से नहीं किस्मत से मिलती है। वाह वाह क्या बात है क्या बात है। बहुत ही अच्छा शायरी लिखते हो। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपको आपके इस किस्मत वाले मोहब्बत से जल्द मुलाकात हो। और दुर्गेश ने हमें धन्यवाद दिया है और बहुत ही प्यारा शायर है वो हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद। तो चलिए दोस्तों हमारा अगला गीत है कहना है तुमसे। जी हाँ फिल्म है मन 1999 का है और आमिर खान और मनीषा कोइराला है इस फिल्म में। कहना है तुमसे कहना।

तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? मन फिल्म का गीत था, कहना है तुमसे कहना। और चलिए दोस्तों, अगला गीत जो मैं आपको पेश करने जा रही हूँ, बहुत बहुत ही प्यारा गीत है, यादें फिल्म का है। और हाँ, मिनल अहमद तो खुश हो गया होगा। चलिए अगले गीत की ओर चलते हैं, ए दिल की दुनिया में। और साथ में आपके संदेश और भी संदेश आए हैं लल दिन पुया की तरफ से। लिट्यार जे नंग माता ने लोंगा इतवे जोंग सोंग तान लल दिन पुया फलकोन वेंग लाई की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया दिन पुया, ये गीत जो है वो भी हम आपके भी नाम करते हैं।

की दुनिया में यादें फिल्म का गीत है। चलिए, मिनल अहमद भी बहुत बहुत खुश हुए हैं। आपका संदेश मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, उसने मुझे इतना सब्र दिया कि मुझे तकलीफ देने वालों के लिए भी मेरा मेरे दिल से दुआ निकलते। वाह, ये तो होती है ना, बहुत अच्छा चीज आपने लिखा है। और हाँ, ये जो आपने लिखा है हम सब के लिए है, मैं कह दूं कि जी हाँ, सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत बहुत ही जरूरी है ऐसा सोचना। ये अल्लाह मेरे इस सब्र को हमेशा बरकरार रखना। बिग थैंक्स यू आरजे जी, सो स्वीट। बहुत आपका भी स्वागत, मतलब वेलकम, मोस्ट वेलकम है। और दुर्गेश नगनपुरे ने मिनल को अपना फोन नंबर देने के लिए कहा है। मिनल, अगर आपके पास समय हो, पेन हो आपके साथ आपके पास, या फिर अपने फोन से उनका नंबर ध्यान से लिख दीजिएगा। दुर्गेश का लिखते हैं, हाँ, उनका नंबर है 8120712914, 8120712914। तो अगर बातें करना हो दुर्गेश से, जरूर बात कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे एफएम जो 107.7, मैं हूँ आपकी आरजे अमोइते। मेरे जाने का वक्त आ गया है दोस्तों, फिर आपसे फिर बातें कब हो ये तो बस भगवान ही जाने। चलिए, जाते जाते एक और गीत आपको जरूर सुना कर जाऊंगी। बहुत ही हिट फिल्म है ये भी, सरफरोश फिल्म का गीत है। आमिर खान और सोनाली बेंद्रे है इस फिल्म में। इस गीत के साथ में इस खंड की और इस ट्रांसमिशन की क्लोजिंग करना चाहूंगी। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं जो हाल दिल का। शुभ रात्रि।